शब्दी समाप्ति हुई है, पर मैं अब जी चरणा विच बेनती करा, खास करके मेरिया बच्चिया भैन मावा कि तुहाडी जिहड़ी सुर है इस ट्यून दे हिसाब नाल बंदिश दे हिसाब नाल बहुत अच्छी लगती है। सिंगां दी भी आवाज लगेगी पर थोड़ी जी नीवी रहेगी जां बहुत उच्चा गाना पाएगा, पर बीबिया की आवाज बहुत प्यारी लगेगी ते शायद गुरु नू भी प्यारी लगे। एक बार गाओ असी गाउंदे आ, ऐसा सतगुर जे मिले तिस नू सिर सौंपिए इतना, ते हुण तुसी सुन चुके हो सारे ने गाउणा रल के, वीरां बजुर्गां बच्चियां ने भी सब।

खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे।

0: गुरु वाहे गुरु
1: करने आलो जावे तन तन श्री गुरु ग्रंथ जी तो मानु पावे
2: बल्ले सोने हाल
3: बल्ले सोने हाल
2: बोले
1: जावे तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे मन नूं पावे
2: जे कारज कावे ने आलो जावे तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह दे मन नूं पावे।

0: बोले सोने हाल
1: देख तेग पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे लागते दीवान।

तीर्थ नहवा जेत सपावा विण पाने के नाहे करी जेती सरठो पाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई।

जित जग ली जीत नदर न आवई तावात न पुछे की कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरी नानक निर्गुण गुण करी गुणवंतिया गुण दी तेहा कोई न सुजाई जे तिस गुण कोई।

असंख जप असंख पहाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन।

चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जन रचाई रंगी रंगी पाती कर जिनसी माया जिन उपाई कर

आदि सत से आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवीस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध अवरासाद।

आदेशत सह आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वीस एक दूजी बलख हो हे लख वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीश इतराहि पद पवड़ी।

नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता अधो उर्द अर्धंग अगंग ओघ हर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अछेदी अपिहदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी

सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरुखो दार मूर्त अजोन आदि सीख देश और न पीस जाकर रूप रेख न राग जतर तत्र दशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ न जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहि एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेवना जान ही जह वेद और कतेब रूप रंग न जात पात सुजानई कह जीव तात मात न जात जाकर जन्म मरन विहीन चक्कर बकर फिर चतर चक मानई पुरतीन लोक चौदह के बिखे

अनंत है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदिख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है।

बीज बीजे। नमो राज संग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पोज पोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक भंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद अजय अलय अपह अभय अपहु अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अले।

अकर्मंग अपर्मंग अगंजे अलिखे पुजांग पर्यात शांद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे इंद्र कामंग विपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करी मुलुक निंदा समस्तल निवासी।

सुनै अत हिरण मैं तब जूझ मरूं। जब आव की औध निदान बनै अत हिरण मैं तब जूझ मरूं। जंग दरायद काल जमन जंग दरायद काल जमन भुगोयद की मन फौज कुशाहम। जंग दरायद काल जमन

निर्भौ भए गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है।

सच सुनिया जद संत ने सड़ होया कोले, फिर बैरागी कड़के आ गुस्से विच बोले हो, फिर बैरागी

सुन बड़ा आखै सब कोए कि बड़ बड़ा डिठा हो कीमत पाए ना कहा जाए कहने वाले तेरे रहे संभाए वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा किता की बणचीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मेला कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कह ना जाई तेरी तिल वडियाई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वडियाईया तुद बिन सिधी किने ना पाईया करम मिलै

गुण ए हो नाही कोए ना को होवा ना को हो जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिंदन करके कीती रात खसम विसार है ते कम जाता।

मुख राम नाम प्रकाश गुरमत नाम मेरा प्राण सकाई हर कीर्त हमरी रह रास रहा हजन के बड बाग वडेरे जिन हर हर सदा हर प्यासा हर नाम मिलया तासा है मिल संगत गुण प्रकाशा जिन हर हर हरस नाम न पाया ते भागहीना जम पासा जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवासा जिन हर जन सतगुर संगत पाई चिंतर मस्तक लिखिया लिखास तन तन स संगत जित हरस पाया

गयो तुहारो द्वारा, भय गय की लाज असा, गोविंद दास तुहार। राम कली मल्ला तिजा नंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद नंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तह पाया, सहज सहती मन वजिया वादाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आईया, सब तो तै गावो हरि केरा, मन जिनी बसाया, कह नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रो अन्नाले, हनारो तू मन मेरे दू सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा काज सब सवारना, सबना गलां सम्रत स्वामी सो के मनो विसारे, कह